जीते पंच बिकार तिन संतन कौ बंदना सिर चरणन पर तार एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह है।

काम करो धन कर परया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पन वड्डा हे कर डांडे उत्पन वड्डा हे रहाओ साग तारा साध न जाने तने अंतर होमे कंडा हे ज्यों ज्यों चलै चवै दुख पावै जम काल सह हे सर डंडा हे हर जन हरा नाम समाने दुख जन मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा।

चल हो हरला अकै बसन सुहेला औद कटै दिनस रणारे मन गुर मिल काज सुवारे रहाउ। यो संसार बेकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जिगाए पिया वह रस अकत गथा तिन जानी। जाको आए सोई बेहजो हर गुरते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे।

प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाए। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय घर नौ निध आवै ताए, सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी। गरीब नवाज पातशाह जी ने अपार बख्शिश कीती है, दीवान दी संपूर्णता उपरंत पावन श्री मुख वाक बख्शिया। आप जी दे पावन स्वरूप दी टहल सेवा हुई, सोहिला साहब जी दी बाणी दा जाप कीता गया। बाणी पढ़दिया सेवा करदिया आप जी दी हजूरी विच विचरदिया होईयां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां लई खिमा बख्शनी, अगे तो सुमत बख्शिश करनी। इस वक्त सेवादार संगत आप जी दे चरणा विच हाजिर है। आप जी अपने सुंदर आसना उपर सुभायमान हो के आराम फरमाओ, सेवकां नूं खुशियां बख्शो। सेई प्यारे मेल जिन्हां मिलिया, तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो, देग तेग देग तेग पंथ की राज करेगा झूलते निशान रहे लागते दीवान रहे बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

करहै पार। नानक नीच कहै विचार, वारिया ना जावा एक वार। जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लोह। असंख कह है सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सालाह। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण। अखरा सिर संजोग वखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे। जिव पुर माए तिव तिव पाहे, जेता किता तेता नाओ। विन नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार। वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार, भरियै हाथ पैर तन देह। पानी धोतै उत्तर सो खेह, मूत पलीते कपड़ होए। दे साबून लइयै ओह धोए, भरियै मत पापा कै संग। ओह धोपै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखन नाहे। कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो। नानक हुक्मी आवहो जाहो, तीरथ तप दया दत दान। जे को पावै तिल का मान, सुनिया मन्या मन कीता भाव। अंतरगत तीरथ मल नहाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए। विन गुण कीते भगत ना होए, स्वस्थ आत बाणी बरमाओ। सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सो वेला वक्त कवन। कवन थित कवन वार, कवन से रुते माहो कवन। जित हुआ आकार, वेल ना पाया पंडती। जे होवै लेख पुराण, वक्त न पायो का दिया। जे लिखन लेख कुरान, थित वार ना जोगी जानै। रुत माहो ना कोई जा, करता सिर ठीकाओ साजे। आपे जानै सोई, केव कर आखा केव सा लाही। क्यो वरनी केव जाना, नानक आखन सब को आखै। एक दू एक सियाना, वड्डा साहिब वड्डी नाई। कीता जा का होवै नानक, जे को आपाओ जानै। अगै गया ना सोहै, पाताला पाताल लख। आगासा आगास, ओड़क ओड़क भाल थके। वेद कहन एक बात, सहस अठार है। कहन कतेबा असलू एक तात। लेखा होए ता लिखिया, लेखा होए विनाश। नानक वड्डा आखिया, आपे जानै आप। सालाही सालाही, एति सुरत ना पाईया। नदिया अतै वाह, पव है समुंद ना जानिया। है समुंद साह सुल्तान, गिरहा सेती माल धन। कीड़ी तुल ना होवनी, जे तिस मनहु ना विसर है। अंत ना सिफती कहन ना अंत, अंत ना करणै देन ना अंत। अंत ना वेखन सुनन ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत। अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार। अंत कारण केते बिल लाहे, ताके अंत ना पाए जाहे। एहो अंत ना जाने कोए, बहुता कहिया बहुता होए। वड्डा साहिब ऊचा थाओ, ऊचे उपर ऊचा नाओ। एवड ऊचा होवै कोए, तिस ऊचे कौ जाने सोए। जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगहै जोध अपार, केतिया गणत नहीं विचार। केते खाप तुटह बेकार, केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाही खाहे, केतिया दुख भूख साद मार। एह पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणै होए। होर आख ना सकै कोए, जे को खाए क आखन पाए। ओह जाने जेतिया मोहे खाए, आपे जाने आपे दे। आख है से पे के जिसनो बक्से सिफत सा लाह। नानक पात साही पात साह, अमुल गुण अमुल वापार अमुल।

ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਬਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਆਖ ਹੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਨ। ਆਖ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੇ, ਆਖ ਹੈ ਇੰਦ, ਆਖ ਹੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖ ਹੈ ਈਸਰ, ਆਖ ਹੈ ਸਿੱਧ, ਆਖ ਹੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖ ਹੈ ਦਾਨਵ, ਆਖ ਹੈ ਦੇਵ, ਆਖ ਹੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੇਤੇ ਆਖ ਹੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹੇ, ਤਾ ਆਖ ਨਾ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੇਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇਵਡ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ। ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਹਿ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਹਿ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇਹ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਹਿ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਨੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗਾ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੂੰ। ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ, ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ। ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਜਿਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾ ਤੇ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ, ਪਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ। ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤ, ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ। ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ। ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਾਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਯੋਗ ਦੁਇਕਾਰ, ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਬਾਨ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਨ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਬਾਉ ਲੱਖ ਹੋਹੇ, ਲੱਖ ਹੋਵਹਿ ਲੱਖ ਵੀਸ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਹੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਏ ਤੋ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਇੱਕੀਸ। ਸੁਣ ਗੱਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ।
आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगन देन ना जोर, जोर ना जीवन मरण नह जोर, जोर ना राज माल मान सोर, जोर ना सुरते ज्ञान विचार, जोर ना जुगते छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर विखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राते रुते थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै नीसान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, किते पवन पानी वै संतर, किते कान महेस, किते ब्रह्मे काड़त घड़िया है रूप रंग के वेस, केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद, केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरेंद, केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद, सर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ता किया गला कथिया ना जाहे, जे को कहै पिछै पछुताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन मह राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे, ना ओहे मरह ना ठागे जाहे, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो, करहै आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर विखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत ना अंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुकम तिवै तिवकार, विखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जात पाहारा धीरज सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तापताओ, भांडा पाओ अमृत तित ढाल, घड़िया शब्द सची टकसाल, जिन कौ नदर कर्म तिन कार, नानक नदरी नदर निहाल, सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुए दाई दाया, खिलै सगल जगत, चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर, जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल, जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री वाहिगुरु जी की फतह है जाप, श्री मुख वाक पात साही दसवी छपै छंद, त्वै प्रसाद चक्कर चिहन अर बरन जात, अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख, को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश, अमितोज कहिजै कोट इंदर इंदरान, साहे साहान गणिजै त्रिभवन महीप, सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत, त्वै सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम, बरनत सुमत पुजंग पर्यात छंद, नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग, कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे,
नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सो एकाय नमस्तं अनेकाय नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्परमे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं परपोगे नमस्तं सोजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्मे नमस्तस्तरम्मे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेसे नमस्तं निरतामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवाय नमस्तं अपेवाय नमस्तं अजन्मे नमस्तं सोबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तं अबरने नमस्तं अमरने नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतंदे नमोस्त अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्त रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी शांद त्वय प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अते हैं अपे हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजे है अजाद है अजन्म है अबरन है अपूत है अपरन है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबाह है अगाह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है पुजंग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ते निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने
नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंतरं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध करता अदु उर्द अर्दं अगं ओग हरता परम परम परमेश्वरं पुरुष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जूर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपी हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात शांद अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृसं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट शांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छांद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर तत्र विराज ही अवधूत रूप रिसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग जतर तत्र दिशा विसा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हूं नह जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव ना जान ही जेह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई कह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बेहीन
चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्ब बिसव रच्यो स्वयं भव गड़न भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग ना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग अनात्म एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र ना जान ही जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवही बहुचित मद भार छंद त्वै प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अभंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अब अभंग गात मित अपार गुण गण उदार मुन गण परनाम निरपै निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्बा भर नाडै अन डंड बाडै चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर भरती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर मानिया चत्तर चक्कर दानिया चाचरी छंद ना सत्तरै ना मित्रै ना परमंग ना पितरै ना करमंग ना काय अजन्मंग अजाय ना चित्तरै ना मित्रै परे है पवित्रै पृथिसै अधिसै अदृश्य अकृसै भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरनै के विभूत करनै के राजं प्रभा हैं के धर्मं तुजा हैं के आशोक बरनै के सर्बा अपरनै के जगतं कृति हैं के छत्रं छत्री हैं के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्रं बेहिनै के एकै अधीनै के रुजी रजाकै रिहिमै रिहाकै के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफवुल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रुजी देहांद हैं के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वतर मान्या है के सर्वतर दान्या है के सर्वतर गौना है के सर्वतर पौना है के सर्वतर देसा है के सर्वतर पेसा है के सर्वतर राजा है के सर्वतर साजा है के सर्वतर दीना है के सर्वतर लीना है के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देसा है के सर्वतर पेसा है के सर्वतर काला है के सर्वतर पाला है के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता
के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजय के सर्वतर राजय के सर्वतर सोखय के सर्वतर पोखय के सर्वतर तराणय के सर्वतर प्राणय के सर्वतर देशय के सर्वतर पेशय के सर्वतर मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वतर जाप्याय के सर्वतर थाप्याय के सर्वतर पानय के सर्वतर मानय के सर्वतर इंद्रय के सर्वतर चंद्रय के सर्वं कलिमय के परमं फहिमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुसनुल वजूहय तमामुल रुजूहय हमेशुल सलामय सलीखत मुदामय गनीमुल सिकस्तय गरीबुल परस्तय बेलंदुल मकानय जमीनुल जमानय तमीजुल तमामय रुजूअल निदानय हरीफुल अजीमय रजायक यकीनय अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुकत स्वरूप हैं त्रिमुकत विभूत हैं प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदि अनूप है समस्त पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओअंग आद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागय त्रिभुगत स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं किनरकं परनास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुकत प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुगत स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं निरुकत सदा हैं विभुगत प्रभा हैं अनुकत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं चाचरी शांद अपंग हैं अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अभूत हैं अदूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंध हैं अबंध हैं अभक्त हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अदेख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगंभ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वय प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना पोतरै ना पुत्रै ना सत्रै ना मित्रै ना तातै ना मातै ना जातै ना पातै निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती चांद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी देहांद हैं के राज कर हिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनुल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल सिकान हैं हिरासुल फिकान हैं कलंकं परनास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजायक रहीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकं परनास हैं
बहेस्तुल निवास हैं के सरबुल गवान हैं, हमेशुल रवान हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परंग परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदेशुल अलेख हैं, हमेशुल अपेख हैं, जमीनुल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमुल कमाल हैं, के जुरत जमाल हैं, के अचलंग प्रकाश हैं, के अमितो सुबास हैं, के अजब स्वरूप हैं, के अमितो बेभूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलंग अनंग हैं, के अमितो अपंग हैं, मद भार छंद त्वय प्रसाद मुन मन परनाम गुण गण मुदाम अरबर अगंज हर नर परपंज अन गण परनाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण परनाम जल थल मुदाम अन चिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एकै सदाहु ओंकार आदि कथनी अनादि खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन चिज गात आजिज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन तुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन बरन अनंत दाता महंत हर बूल मना छंद त्वय प्रसाद करुणालय है अर कालय है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्या है सर्व नास्या है करुणा कर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पर ते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है विश्वंग पर है करुणालय है निरप नायक है सर्व पायक है भव भंजन है अर गंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपै अभय अपू अजू अनास अकास अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे
भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं परनासे सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग परनासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते।

कलं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपुते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साहि दसवी त्वै प्रसाद सुवैये। सरावग सुध समूह सिधान के देख प्रियो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के। सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखियत प्राण पति के। श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के। माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे। कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे। भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत सीस न जात बिचारे। एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे। जीत फिरै सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। भूत भविख भवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे। श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे। तीरथ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखै। वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै। पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजारक देखै। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै। सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलैंगे। भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलैंगे। तोर अरीन मरूर मवासन माते मतंगन मान मलैंगे। श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलैंगे। वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया। तोरत देस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया। साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सुवेक देवैया। दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह परसन फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजिंदर नरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर बिशन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्रीपत के प्रास हैं पग ते नर फेर न देह धरेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै। बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरो लिये सात समुंदरन। लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिखियान। सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीस निवायो। को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

रसना गुण गोपाल निद गायन शांत सहज रहस मन उपजियो सगले दुख पलायन। रसना गुण गोपाल निद गायना

आओ जो मागह सोई सोई पावह सेव हर के चरण रसायन जन्म मरण दुहु ते छूटह पवजल जगत तरायना।

अबिनासी खेम चाह है जे नानक सदा सिमर नारायण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे।

नानक जुग जुग जान से जाना रोवे सच समाले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

भगवान धन धारा संपत सगल जिन अपनी कर मान इनमें कछ संगी नहीं नानक साची जान। पत तू धारण पै हरन हर अनाथ के नाथ कहो नानक तेह जानी है सदा बस्त तुम साथ। तन

एक संग पंच बरंगन संग अलापे आठो नंदन प्रथम राग भैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बेलावली पुन्या की गावै बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए भैरो की पांचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनावे बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गावहे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक अलापहे संग रागनी पांचो थापहे गौण करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुति उचारी त्वनासरी ए पाचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्तांग में वारा परबल चंड कौशक ओ पारा खोखट ओ पौरा नंद गाये अष्ट माल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावही तीलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस इहरी लै भार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमा नंद भास्कर आई चंद्र बिमंगलन सोहाई सरस बान ओ आहे बिनोदा गाव है सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीप की बारी कह शेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी ओ गुजरी संग दीपक के थाप कालंग का कुंतल ओ रामा कमल कुसुम चंप के नामा गौरा ओ कन रख लियाना अष्टपुत्र दीप के जाना सा मिल श्री राग वै गावहे पांचो संग बरंगन लावहे बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसावरी ते पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यों पांचो थापी सालू सारग सागरा और गण गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के

सब है पुत्र राघन के आठारह दस बीस। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। राम कली साद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जग दाता सोए भगत वशल तेहलोए जियो। गौर शब्द समावे अवर न जाने कोए जियो। अवरो न जान है शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे। आया हाकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतूल ठाकुर भगत ते हर पाया। हर भाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो। सतगुर करै हर पै बेनती मेरी भैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजन। अंत चलदिया होए बेली जम दूत काल ने खंजन। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर धार कृपा सतगुर मेलाया तन तन कही शबाश जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरे हर भाणा आओ मैं पास जियो। हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे शबाश जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे। आनंद अनहद वजे वाजे हर आप गल मिलावे। तुसी

संतो सब जगत पैरी पाए जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सरवर मह हंस, हंस मह सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर। सुन मंडल एक जोगी बैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। त्रिभवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे शरणाई। आनंद मूल अनाथ अधारी, गुरमुख भगत सहज बिचारी। भगत वचल पै

जिन किश किया सोई जाने ताका रूप अपारो नानक किसनो बाबा रोई है बाजी है एहो संसारो।

दोएपड़ जोड़ विछोड़न गुरबिन घोर अंधारो सूरज चंद सिरजन अहनिस चलत विचारो सचड़ा साहिब सच।

रूप न जाने सोहनी है हुक्म बद्धी सरकारू बालक बिरद न जाननी तोड़न हेत प्यारू नौ दरठा के हुक्म सच्चे हंस गया गैनारी सा तन छुट्टी मुट्ठी झूठ विधनिया मृतकड़ा अंगन अड़े बारी सुरत।

है उठ चलना अद पंद है संसारुवा सिर सिर सचड़ लिखिया दुख सुख पूर्व विचारुवा दुख सुख दिया जेहा किया सो निब है जी नाले जेहे कर्म कराए करता दूजी कार न पाले आप निरालम तंदे बाधी कर हुक्म छड़ावन हारू अजकल कर दिया काल व्यापै दूजे पाहे विकारू जम मार्ग पंथ न सुजई उज

तो जम मार्ग नहीं जाना शब्द समाना, जुग जुग सत्य विसे, साजन सहन मिलो संजोगी, गुर मिल खोले फासे। बाबा नांगड़ा आया जग में है, दुख सुख लेख लिखाया।

बंधन छुटे सब किस होत उपाय, नानक सब किस तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय, संग सखा सब

सोत उठहै तान कलोल गायन तार मिलाव ही ते लंगी देव करियाई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै पार जा संग लाई पंच वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए।

कहो नानक साब तेरी वड़ियाई कोई नाओ ना जाने। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय घर नौ निध आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी। पांच प्यारे चार साहिब जादे चाली मुकते समूह संगतां हठियां जपियां तपियां जिन्ना आप जी दा नाम जपिया। वंड के शकिया देग चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तना प्यारियां सचियारियां दी पावन पवित्र कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए बच्चियां दे टोटे टोटे करके गलां विच हार पवाए। सवा सवा मन दे गिले पीसने पीसे खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा कीता जंडा नाल बन के साड़े गए। देगां विच उबाले गए पुठियां खल्लां लुहाइयां गुरद्वारियां दी सेवा संभाल दे लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुआसा संग निवाही तिना समूह शहीदां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दी पावन कमाई दा त्यांतर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे। चित आवण का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब। तहां तहां रछिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज। पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। बख्शो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृत सर साहिब जी दे पवित्र यात्रा अते दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार बोलो जी। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा हे अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां। जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है जी तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार। अते सेवा संभाल जी का दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाण्यो के माण नितान्यो के तान। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जिया का पावन गुरवाक है राणा राओ ना को रह रंग ना तुंग फकीर। वारी आपो अपनी कोय ना बंदे धीर आप जिया दे बख्शिश कीते होए। समय ते स्वासा रूपी पूंजी भोगदियां होया बीबी सुरिंदर जीत कौर जी जो पिछले दिनी अकाल चलाना कर गए सन तिना दे मृतक शरीर नू अग्न भेंट करन तो परंत आप जिया दी पावन पवित्र हजूरी विच अलाहणियां दे पाठ होए हन। पिछले दिनी आरंभ होए श्री सहज पाठ साहिब जी दे भोग पाए गए हन। राम कली सत जी के पाठ गुरबाणी कीर्तन अते छे पौड़ियां आनंद साहिब जी की अरदास है जी। गुरबाणी पढ़दियां सुनदियां समुचियां ही सेवावां निभांदियां होईयां सरबत भुल्लां दी कृपा करके खिमा बख्शणी। अगाह वास्ते समत बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी दा फल आदेश विछड़ी आत्मा नूं बख्शिश करदियां होईयां सदीव काल वास्ते चरणा विच निवास बख्शिश करना आवागवन दे गेड़ तों बचा के रखना पिछे समूह परिवार अते साख संबंधियां नूं भाणा मन्नण दा बल बख्शिश करना मृतक प्राणी दे निमित परिवार वल्लों आप जी दीआं संगतां वास्ते जो जो भी सेवावां भेटावां हाजर कीतियां जा रहियां हन दर प्रवान करदियां होईयां अंगीकार करनियां सेवकां दे लोक परलोक दे परदे कज लैणे
ਬਿਰਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਜ ਪੈਜ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਦਾ ਅੰਗਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ, ਸੇਈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਮੇਲੇ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

त्रिपतास है मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रास नाम ना पाया ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास।

तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जान होई। आसा महला चौथा।

मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै, रहाओ जाप तप सं

लिए है, चुन चुन सत्र हमारे मारिये है, आप हाथ दे मुझे उबरिये, मरण काल का त्रास निवरिये, हुजो सदा हमारे पच्छा।

सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जाब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप आपनी बूझो चार, तुम सब हीते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार।

ना जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप सुरूपा, रंक भयो राव कही भूपा।

दुष्ट जिते उठवा तो उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे, पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब

वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है।

सेवी है एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांद साहो जिस पास बैठे सोही है सबना दा वेसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावहो गोपाल राय बंदना हर बंदना गुण गावहो गोपाल राय रहाओ वड़ा भाग भेटे गुरदेवा कोट परा।

निरपो नाम जपहो हर रंगे पार तन दोख किछ पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवे नेड़े तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।